0: हला हे तिलियाली हम आला तिले बेले ई खाती हाले हम आला तिले आले खाती आला हे के तिलिया मेला बाहले बेले वेले वसुत बाला खड़ा वाली बाहे मेने ले थे माफा तिला दे सोए नवत लदी अशुद्ध बाला यीशु वहांसे के नाम में फले आओ
1: देखे रामा खातिरा रे तेरे बे
0: ई हमाला के तियाले हमा
1: तेरे बे दे दे रवातिरा हालेलुया
0: इतेलिया माला माती हाना हेले केती लिहा मेले माती लिया ले ओबरे सुति वेवा स्वामी वहांसे ओबांसी उदाउ करन ने किने

0: जय श्री वेवा
1: इसे स्वामिनी ओब सबबिनम सुविशुद्धे सिल सुविशुद्धतावे उल्पत बोहन से में एहिन बोहन से गे आत्मनंगे अनुभवेन में पांडु परिशुद्धवत करण में नपियाय दिब अपे से अदुने में पांडु अपुदेसा अपे स्वामिन वन जेसुस क्रिस्तुन महान से गे श्री शरीरया श्री रुधिरया बावटे पत्वनु संधाय උන්වහන්සේ දුක් සහිත මරණයට සිය කැමැත්තෙන් කැමැත්තෙන් පවරා දීමට පෙර පුපේ රැගෙන උන්වහන්සේට තුති පුදා ඒ කඩා